0: सैन्य समुदायमा
1: बिलाइन भरि
0: अन एयर
1: एपमा
0: अनि स्मार्ट स्पिकरमा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
1: यू बीएफबीएस गोर्खा रेडियो हो।

ipatu kak nolasa kusta jazo Nepali sa Nepali jazo chini na chuna dila jazo sa ye mahanagar palika ya chagu bukha dete na ye mahanagar ha twa twale sankipa mohotsav yai go jugudo ye mahanagar palika thoye bego asar 5 gate ni se 26 gate tak shukrabar wa shanibar sarvajanik tha park dawli wa chukachuke twa twale sankipa mohotsav yai go jugudo mahanagar chagu patrakar sammelan yase mohotsav chi sarvajanik yago do mahanagariya katha महोत्सव या उलेजा असार 5 गते खुला मंचे व 6 गते व्हीकल फ्री असन क्षेत्रे संचालन याएको जुगुदो नेपाली चलचित्र क्षेत्र विकास व विस्तार या त योगदान बिहु व रचनात्मक उद्योग या त समुदाय नापस्वाग उद्देश्य थुगु ज्याझो या तनागुदका महानगर धागुदो महोत्सव अन्तर्गत लघु चलचित्र नाप चलचित्र प्रदर्शन कला व रचनात्मक उद्योग सम्बन्धी संवाद सांस्कृतिक नाप सृजनात्मक ज्याझोले स्थानीय नस्सा बोज्या या तंगुख चलचित्र प्रदर्शनी नीति एलडी स्क्रीन साउन्ड सिस्टम नाप क्युरेटर या व्यवस्था महानगरीय सम्पदाली से पर्यटन विभाग व स्थानीय युवा तेसा व्यवस्थापन याएको जुगुदु महानगर वैगुदि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव नाप स्वाना थुगु ज्याझो या तेंगु ख महानगरीय प्रवक्ता नवीन मानन्धर पितृबिगु विज्ञप्ति त्वा त्वाले फिल्म महोत्सव महानगरियागु रचनात्मक सहर यात्रे प्रारम्भिक पलाजीगु दासे थुकी या त तालाकित संचार माध्यम चलचित्र कमी नाप सरकार वाला तेगु गुहालीजीगु भल्सा बेकल नेतना दिगु दु महानगरपालिका आठो विशेषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म दिन या लस्ता चाहिँ सनाया थियो मुजा खन्जुल आ अन चाहिँ आज सुबले नेपाली व नेवा भाय गुप्री संकिपा खन्युल सायद प्रदर्शन जिगु छ स्पेसिफाई यन तगु मद या छ 800 चाहिँ नगु एक्सपीरियन्स जिगु जुल लापन संकिपा त एना क्यों अन विशेषणा चाहिँ इन्द्र जात्रा इले जनबाले हे चोपियन जनबाले मछिन्द्र बहाल क्लब दया दुमला आवे कपी प्लस अले थे मिहालामी पवित्र कसा जुबी वेकन व क्लब हे वेकपी सँगै अनि मिले ज्या मेगुन युस क्लब क्लब मिले ज्या चाहिँ अन विभिन्न संकिपा त किनि पन आदिको प्रश्न जिफो कुनै व्यवस्था चाहिँ असार महिना बजेट सिरेके त यागु खला रखान आसे जिफो तर अनल हस अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव नाप स्वागत गर्न खोजुल तर आयु इले आठो वाई वाई इले चाहिँ आउ सायद छुइन छुएको कभर त या कि मसँग एलडी स्क्रिन ल प्रब्लम जी एन आई किनको व्यवस्था चाहिँ यागु दुजी स्वे गेजी खा आथौ नक्तिनि 2 गते जुल असारिया 5 गते राबले थ शुक्रबार 6 गते र शनिबार शनिबार सिटी नखन सिटी नखाय बारे न छ खला मास्ति होला थुक्सी सिटी नखा चाहिँ बसल प्लान लिपाला तमलाई बिसे अन लगा दोजिया चाहिँ असारे ला होला तर सिटी नखा लगा दै चाहिँ छिनेवा तेगु थगु हे व वातावरण दिवस मतलब सिटी नखा भले चाहिँ लया गुलिन अन प्राकृतिक मुहान त दु सफाई गुदि अदगा दै गु तुन्थी अले लोहिति बुगाजा अयु चाहिँ सफाई गुदि तर आ थो विशेषणा शहरी क्षेत्र स्वयं खसा थो थो लोहिटी जेना चाहिँ लोहिटी दल्ला लोहिटी र खस नारा तर लोहिटी लोहिटी त न तस्को हे कम ज्याव नुगला लोहिटी स्रोते मरे नुगला आ दक्षा चाहिँ कोइठंग गाम या व प्लास्टर या नाम खला धलान या एना छेन दिने बलेला स्रोत दको सुना भन्नु गला अले आ तुन्थी हाल न अठे ख तुन्थी न ल अबे उ तस्को मुजि नुगला ए न सिम्बलाइज्ड रूप हे जो सा छु छु तुन्थी तदु ओ तुन्थी सफायाको ज्याजी गन गन तुन्थी व प्राक्टिकल ज्यान यान चमदु लापरिसा एकदमै थो ये येलो महानगरपालिका शिवे पचतापक जस्तै येले न हामी मेगु न न वरा तदुनी पचतापा तपाउने अवस्थित अनजुल अले खोप जुल थिमी जुल मला अनयुक्ति थासे भन्नु बले चाहिँ व तुन्थी सफाई अन्त चाहिँ व लुज एस वे खनि होला अले उले सकम भको सिटी नगर आबे तसको सक्क व न्युदि अले थ आटुके सिग्निफिकेन्स यु खत छिस चाहिँ आ व सिटी नगर खुनि यो पूजा यो सांस्कृतिक पक्ष त दुवे जुल मेन चाहिँ व न्यु खला आथौ गरे व बारे महिना न्युदु एज ओके यु बति चाहिँ बति चाहिँ महत्व कम जुला थे जु मतलब बारे महिना छिटिबा दुसा बा छिजा अनु थासु छ न्याबले न न्यु खन लिसा नापा लेला वोने त कि सिट नखबेमा कि भेबेमा सायद कि बुदिबेमा जे होला दस क नापा सब मथुरा से हामी जुम कना दिउगा नापा खे ने त खे छगल खे ने त चाहिँ बुदिबेमा
मेबले साथी खेने वे मरु असुले खे मरुगा खे तस्तो मजुगा आ आथे व व्यावसायिक रूप खालै मखने साउलेला अले खेने मास्टु वे कय पेसुनी हो बुद्धि वले चाहिँ बुद्धि झुम समस्त सक बिय छगो अझ मे बिन्दला बागा बागा ताना दिय क्लबले संतान छमजक झिम निम सम पेम न्याम छिम त कन देया गुना हुनो छे अले अझ संयुक्त परिवार जिबले तबाया मस्त बोया मस्त अझ काकाया मस्त भागा दैछ नि नि अले ओले ह चाहिँ सु जन्म दि जुल ओ जन्म दि जुम म चाहिँ त चाहिँ छग खेन कि म मे बिन्द चाहिँ बागा बागा नकि आथो तस्क न पाइ खोजल मथुरा स्यामी उयो होला यो कै दे लगभग से दयो हरारी दैजी सायद उयो यहाँ छ अजागु नेवा समाज हो अहिले आज एकदमै चाहिँ कमर्सियलाइज नेवा समाज एकदम खोला आज देवाजको दोसा छि यहाँ गुण परिकार यहाँ उहिले न नेफ यस्ता सिटी नख छिगो विशिष्ट छगु नख अहिले थो नखले चाहिँ मेन रूप चाहिँ नै गुडाइको चाहिँ गो एज ल एज यहाँ सिटी नख या छिपिन्द भिन्तु नाम विषय ज्याजस्तो चाहिँ छपिने स्वातेला